बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। FM रेनबो पर।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। तो दोस्तों, आज हूँ मैं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त ज्योति लेकर कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप सिर्फ और सिर्फ 107 एफएम रेनबो पर। तो दोस्तों, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज है प्यार, तकरार, ढेर सारी मिठाई और राखों के धागों का त्योहार यानी रक्षाबंधन। तो दोस्तों, आज 11 बजे तक हमारे साथ चलने वाली है नॉन स्टॉप वो बातें जो अपने भाई बहन के साथ जी है। तो निकालिए

टेलीफोन बताइए कि आज गिफ्ट में क्या मिला और कौन सा किस्सा आज घर में सबसे ज्यादा याद किया जा रहा है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि जो बचपन की यादें होती है ना, भाई बहनों के लिए बेहद खास होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो अपनी जिंदगी के जो बेहतरीन पल है वो अपने भाई या बहन के साथ बिताते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के साथ भी ऐसा कुछ ना कुछ किस्सा तो हुआ ही होगा। बिल्कुल, तो आज अपने भाई या बहन को क्या गिफ्ट देने वाले हैं, या फिर क्या गिफ्ट मिला आपको, या फिर आपको कौन सा किस्सा आज भी सबसे ज़्यादा याद आता है, बिल्कुल आप अपनी यादों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा नंबर है 2213-1341-221-3141। तो दोस्तों, जब तक आप सब फोन उठाकर नंबर डायल करें, तब तक क्यों ना अगले गीत की ओर रुक किया जाए।

0: तो दोस्तों हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके था, ये सुनते कि वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्ते जी।
0: नमस्ते
1: जी, आप बहुत अच्छे प्रोग्राम लाइव आज का तो रक्षाबंधन का सबको मेरा तरफ से प्यार भरा शुभकामनाएं है।
0: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी अपने सभी श्रोतागण और आकाशवाणी के परिवार की ओर से आपको भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।
1: जी, मेरा दो बहन है, मेरा दो बहन हमको कॉल की सुबह सुबह बोले से तुम लोग यहाँ आ जाओ। हम बोले मेरा टाइम नहीं है, लेकिन तुम लोग भी हमको कुछ देता, लेकिन हम भी कुछ देते, लेकिन फुर्सत मिलता तो चले जाते ना दीदी।
0: लेकिन वक्त तो निकालना पड़ता है ना।
1: हाँ, लेकिन मेरा दो बहन, हम उन लोग का नाम आज ऑन एयर बताऊंगा दीदी।
0: बिल्कुल बता सकते हैं।
1: रोशनी और रानी, मेरा दो बहन, मेरा बहुत सारा चचेरा बहन है, लेकिन उन लोग भी बुलाई है, लेकिन मेरा ये दो बहन खास है, लेकिन कुछ कारण से नहीं जा सक रहे, कुछ गलत ना सोचे, किसी के माध्यम से सुन के बोल देगा ना, अच्छा होगा ना। बोल के जाने नहीं सके,
0: लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि आपको कोशिश करनी चाहिए, समय निकालना चाहिए। भाई बहनों के प्यारा सा रिश्ता का ये त्योहार है। बाकी दिनों हम समझ सकते हैं कि काम की वजह से आप नहीं जा पाते, लेकिन आज के दिन कोशिश तो करनी चाहिए थी।
1: आप दीदी अच्छी हो दीदी, आपसे तो बहुत दिनों बाद मेरा बात हो रहा है।
0: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी।

0: ठीक होंगे?
1: कोई ना, आपको भी ना फुर्सत मिलने से मेरा भी हाथ में राखी बांध देना आप।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: दूंगा जरूर।
0: जी बिल्कुल।
1: अपने नन्हे भाई ना बहुत अच्छे, आप लोग को बहुत प्यार करते हैं।
0: ये तो पता ही है बिल्कुल, आप जिस तरह से अपनी बहनों से प्यार करते हैं, अपनी बहनों को याद करके आज आप उनका नाम लेकर बता रहे हैं, तो उसी से समझ में आता है।
1: लेकिन ना मेरा घर में दीदी एक तो बात बोलते है, आपको एक बात ऑनियर बोलूंगी, एक तो बात, हम किसी का दावत में भी नहीं जाते, किसी का मैयत में भी नहीं जाता हूँ एकदम। कल भी कोई किसी का मैयत हुआ तो हमको बुलाए, तब भी नहीं किए।
0: अच्छा,
1: हमको दिल ही नहीं करता जाने का एकदम।
0: बिल्कुल समझ सकते हैं, हो सकता है काम की आपकी व्यवस्था हो, व्यवस्था के कारण आप नहीं जा पाते होंगे।
1: हमको सबसे बोलते हैं ना बहुत भाव दिखाते हैं, हम बोले भाव नहीं, हमको दिल नहीं करने से जो चीज हम काय करेंगे।
0: हाँ ये भी
1: ऐसी बात बोलते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कल आके कितना सारा बात सुना, बोले किसी का मेहनत में भी तो जाना चाहिए ना तुमको। हम बोले हमको अच्छे नहीं लगता, बोले तो किसी का जैसे तेरा खानदान में ऐसी है एकदम। हम बोले ऐसी बात नहीं, हमको दिल नहीं करता कोई जगह जाने का। बोले अपना बीवी बाल बच्चा का जब भी कोई जगह मौका मिलता है चले जाता है।
0: हेलो,
1: ठीक है
0: जी
1: दीदी, आप आज एक तो रक्षाबंधन का हमें गाना सुना दोगी?
0: जी बिल्कुल, अभी तो मैंने आपको सुनाया दो दो गीत।
1: हाँ ये गाना बहुत अच्छा था।
0: जी जी बिल्कुल, कोशिश करूंगी कि आगे भी सुना पाऊं। जी
1: ठीक है दीदी।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद नन्हे जी हमसे जुड़ने के लिए।
1: ओके ओके,
0: थैंक यू।
1: आप ऐसे हमेशा प्रोग्राम करते हैं, सुबह का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा हुआ था दीदी।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू नन्हे जी। तो दोस्तों, बात जब भाई बहनों की हो तो भला झगड़ों का जिक्र कैसे ना हो। याद कीजिए वो दिन जब संडे की सुबह टीवी का रिमोट किसके हाथ में रहेगा या किसके लिए बकायदा थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ जाती थी। बिल्कुल, और किसने क्या खाया, मम्मी पापा की डांट से बचने के लिए कैसे एक दूसरे पर इल्ज़ाम डाला गया। लेकिन कमाल देखिए, वही भाई बहन बाहर किसी तीसरे के सामने, एक दूसरे के सामने सबसे बड़े बॉडी गार्ड एक दूसरे के बन जाते थे। आज का ये नया दौर भी उसी एहसास को उतने ही प्यार से पिरोता है। तो सुनते हैं एक बेहद ही प्यारा और मधुर तराना।

0: देखो दोस्तों, भाई बहन जितना भी लड़े झगड़े, लेकिन उनसे बड़े दोस्त कोई नहीं होता। फिलहाल हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके, तो ये सुनते कि वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो।
1: हाँ हेलो,
0: नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार, मैं अरूप बोल रहा हूँ हावड़ा से।
0: जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अरूप जी हमारे इस कार्यक्रम में।
1: मैं तो ओल्ड एज हो गया, 64 हो गया। हेलो।
0: हाँ बोलिए, मैं सुन रही हूँ।
1: हाँ मेरा तो जीजाजी तो नहीं है। यही बात तो बहन है। और हम चाहते हैं आजकल ही सभी बहनों को दुख नहीं है। एक पुराना गाना दीजिए ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल मैं दूंगी।
1: हाँ हाँ पुराना गाना दीजिए
0: जी।
1: ठीक है
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरूप जी हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों स्टूडियो में समय हो चला है 10:19:32, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप अपनी दोस्त ज्योति के साथ, सिर्फ और सिर्फ 107 FM रेनबो पर। तो चलिए दोस्तों, बातों और गीतों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधान

0: मंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। FM रेनबो पर।

0: 137वीं डाक एवं पेंशन अदालत सूचना। मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 22/9/2026 को पूर्वाह्न 11 बजे मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 में गूगल मीट के माध्यम से 137वीं डाक एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं एवं डाकघरों से पेंशन लेने वाले पेंशन भोगियों के पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यूरो का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg/wb@indiapostpost.gov.in अथवा adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapostpost.gov.in के माध्यम से दिनांक 31/8/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट के जरिए डाक एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा से दूरभाष संख्या 0332212050 अथवा 0332212612 अथवा 0332212050 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
1: बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर।

सॉरी आपसे प्रेमरतन बायो का बेहद ही भावुकित बचपन का हम। सच में बचपन भले ही पीछे छूट जाए लेकिन उस बचपन की नींव पर जो रिश्ता खड़ा होता है ना वो कभी पुराना नहीं होता। जिंदगी में चाहे जितनी उलझने आ जाए जब भाई बहन का वो पवित्र प्रेम वापस लौटता है तो लगता है कि जैसे जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। क्योंकि दुनिया में दौलत शोहरत तो कोई भी कमा सकता है लेकिन अपनों का निस्वार्थ प्यार और विश्वास पाना ही जिंदगी का असली रत्न है। तो दोस्तों जिंदगी का दस्तूर भी कितना अजीब है ना। जब हम छोटे होते हैं तो जल्दी से बड़े होने की जल्दी रहती है और जब बड़े हो जाते हैं तब समझ आता है कि वो बचपन वो एक साथ बैठ

तरफ निकल जाते हैं, लेकिन जो चीज़ हमेशा हमारे दिल के संदूक में महफूज रह जाती है वो है सिर्फ और सिर्फ यादें। चलिए दोस्तों, आज रक्षाबंधन के इस दिन पर जब पुरानी बातें, छूटे हुए पल और बचपन की वो शरारतें दिल में उमड़ रही है, तो ये गीत यानी कि यादें फिल्म का ये टाइटल ट्रैक हरिहरन की आवाज़ में, ये गीत हर उस भाई बहन के दिल की बात कहता है, क्योंकि रिश्ते कभी पुराने नहीं होते, बस उनकी खुशबू यादें बनकर हमेशा हमारे साथ चलती है। तो आइए दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत पलों को फिर से जीते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर।

तो दोस्तों घड़ी की सुइयां इशारा कर रही कि अब 11 बजने को आए हैं और हमारे आज के इस खास सफर यानी कि नॉन स्टॉप गपशप के रक्षाबंधन स्पेशल एपिसोड को यही विराम देने का वक्त आ गया है। तो दोस्तों पिछले एक घंटे में हमने बचपन की लड़ाइयों से लेकर राखी के उन अनमोल धागों तक, मीठी यादों से लेकर बचपन कहाँ और यादें जैसे खूबसूरत नगमों के जरिए भाई बहन के उस रिश्तों को जिया जो दुनिया में सबसे अनूठा है। आज के इस पावन पर्व पर बस इतना ही।

107 FM रेनबो, वक्त 3 बजे का, यानी कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ 3 का तड़का लिए मैं आपका रेडियो वाला मैं अमर, पर 3 का तड़का अपनी रवानी पर पहुंचे, अपना जलवा दिखाए, उससे पहले सुनते हैं परियोजना प्रस्तुति। इसके अंतर्गत सुनेंगे कुछ बातें प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को पक्का और किफायती घर उपलब्ध कराना है। अभी शहरी क्षेत्रों के लिए PMAYU20 लागू है, जिसकी अवधि 2024 से 2029 तक है। इसमें पात्रता के लिए इस पर होम लोन पर ब्याज सब्सिडी, यदि पात्र व्यक्ति 1 सितंबर 2024 या उसके बाद होम लोन लेता है तो PMAYU20 के इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के तहत अधिकतम 1,80,000 तक ब्याज सब्सिडी मिल सकती है। इसके लिए परिवार की आय 9 लाख तक, होम लोन 25 लाख तक और मकान की कीमत 35 लाख तक जैसी होनी चाहिए। अपनी जमीन पर मकान बनाना। EWS परिवार जिसकी वार्षिक आय 3 लाख तक है और जिसके पास अपनी जमीन है, BLC के तहत नया पक्का मकान बनाने के लिए 2.5 लाख तक सहायता प्राप्त कर सकता है। PMAYU20 के लिए आवेदन ऑनलाइन यूनिफाइड वेब पोर्टल, नजदीकी CSC या अपने नगर निगम नगर पालिका के माध्यम से किया जा सकता है। सामान्यतः आधार, बैंक खाते की जानकारी, आय संबंधी दस्तावेज और जमीन पर घर बनाने की स्थिति में जमीन के कागजात आवश्यक होते हैं। EWS वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख तक होनी चाहिए। LIG में 3 से 6

0: लाख तक और MIG में 6 से 9 लाख तक। परिवार के नाम देश में कहीं भी पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए। परियोजना प्रस्तुति समाप्त हुई।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।
1: एक सूचना। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 22/9/2026 को पूर्वाह्न 11 बजे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 70001-2 में गूगल मीट के माध्यम से 137वीं डाक एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं एवं डाकघरों से पेंशन लेने वाले पेंशन भोगियों के पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरा का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री SC दास, सहायक निदेशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 70001-2 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in, adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 31/8/2026

2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपयुक्त निर्धारित तारीख एवं समय का गूगल मीट के जरिए डाक एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हो। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332210250 या 0332210612 या 0332210500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधित मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

सोनू निगम, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ, विशाल मिश्रा और रूप कुमार राठौर की आवाजों में आपने सुना फिल्म बॉर्डर के इस गीत को। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने। जी हाँ दोस्तों, तीन का तड़का में आज हम थोड़ी सी बातें करेंगे दीपक तिजोरी के विषय में। दीपक तिजोरी जो कि 90 के दशक के एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता और निर्देशक हैं, जो मुख्य रूप से फिल्मों में हीरो के दोस्त या भाई या सहायक के किरदारों के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 28 अगस्त यानी कि आज ही के दिन सन 1961 को 1961 में मुंबई में हुआ था। इनके परदादा ने भारत की पहली आधुनिक तिजोरी बनाई थी, जिससे उनका नाम उपनाम तिजोरी पड़ा, यानी दीपक तिजोरी। तिजोरी से हमारा मतलब है कि पैसे रखने का जो अलमीरा होता है बहुत ही मजबूत होता है। तो उनके परदादा ने भारत की पहली आधुनिक तिजोरी बनाई थी, जी हाँ, और इसके बाद इनका नाम भी दीपक तिजोरी पड़ गया। इन्होंने मुंबई के नरसी मौजी कॉलेज में पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों में इन्होंने थिएटर शुरू किया, जिसके साथ आमिर खान और परेश रावल जैसे कलाकार भी थे। उन्हें बड़ी सफलता वर्ष 1990 के फिल्म आशिकी से मिली।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
0: और अजीत का भी प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता उन लोगों का इंतजार करती है जो कठिन परिश्रम करते हैं। मुश्किलें आसान हो जाती हैं जब मुश्किल से ज्यादा मेहनत पर ध्यान देने लगते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इतने खूबसूरत विचार को भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी। लिखते हैं,
2: उमंग टीम को पल पल बंदगी करते हैं। विमलेश मैडम जी और अजीत साहिब जी जय जोहार। बंदगी जी, जुलाई वाले सप्ताह में गजब का 16वां लघु कथा प्रसंग सुनाया। गौतम बुद्ध की शरण पाकर अंगुलीमाल डाकू का संत बनना, महात्मा गांधी का मितव्ययता प्रसंग, सुभाष चंद्र बोस के देश प्रेम, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, इन सभी संत महापुरुषों का प्रसंग हमें बहुत शिक्षाप्रद और प्रेरणा दिया। इसी तरह नई नई जानकारी मिलती रहे, दिल से धन्यवाद साहेब।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। लिखते हैं, आजकल मैं उमंग कार्यक्रमों को नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या आप मुझे आकाशवाणी के ऐसे केंद्रों की जानकारी दे सकते हैं जो सुबह 7 बजे से पहले या शाम को 7 बजे के बाद उमंग कार्यक्रम का प्रसारण करते हों? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जरूर बताइएगा।
2: योगेश जी, हम प्रयास करेंगे पता करने की, क्योंकि सभी प्रसारण केंद्रों ने अपनी और छात्रों की सुविधा के अनुसार प्रसारण समय तय कर रखा है। हमारी सलाह होगी कि आप इंस्टाग्राम ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो करें। प्रतिदिन के कार्यक्रमों के लिंक आपको वहां मिल जाएंगे, क्लिक कीजिए और किसी भी समय कार्यक्रम सुनिए।
0: जी, अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और कृष्ण कुमार यादव।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबके संदेशों के लिए। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी ज्ञान यात्रा में, यानी ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
2: जी,
0: तो विमलेश जी शुरुआत की जाए। हमारा कल का विषय था जहाँ बारिश भी रुकना भूल जाती है।
2: जी,
0: तो हमारा आज का विषय क्या होगा?
2: अजीत जी, हमारा आज का विषय होगा जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।
0: वाह, जहाँ सूरज भी परीक्षा लेता है।
2: आज हम बात करेंगे राजस्थान के कुछ ऐसे गांवों की जहाँ गर्मी केवल मौसम नहीं बल्कि जीवन का एक हिस्सा है।
0: जी हाँ श्रोताओ, कल्पना कीजिए, आसमान बिल्कुल साफ है, सूरज सिर के ठीक ऊपर है, हवा चल रही है लेकिन वह ठंडी नहीं है, बहुत गर्म है।
2: जी,
0: धरती इतनी तप रही है कि दोपहर में बाहर निकलना भी किसी परीक्षा से कम नहीं है।
2: हम बात कर रहे हैं राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके की, जहां फलौदी और उसके आसपास के गांवों में गर्मियों के दिनों में तापमान बेहद ऊंचा पहुंच जाता है, 50 से 52 डिग्री सेल्सियस।
0: जी हाँ श्रोताओ, आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ का मौसम कैसा होता होगा। श्रोताओ, यहाँ की सुबह हमारी सुबह से बहुत अलग होती है।
2: जी हाँ श्रोताओ, जब दिल्ली या किसी दूसरे शहर में लोग सुबह की ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में गर्मी सवेरे ही शुरू हो जाती है और लोग जानते हैं कि दिन चढ़ने के साथ गर्मी लगातार बढ़ती चली जाएगी।
0: इसे श्रोताओ, बहुत से काम वहाँ सुबह ही जल्दी निपटा लिए जाते हैं, जैसे पशुओं को चारा देना हो, पानी भरना हो, खेत या घर या कोई जरूरी काम हो।
2: जी,
0: यहाँ लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ये काम सूरज के तेज होने से पहले पूरे हो जाएं।
2: बिल्कुल अजीत जी, क्योंकि वहाँ केवल ये सवाल नहीं होता कि आज कितना काम करना है, सवाल ये भी होता है कि काम किस समय करना है।
0: जी हाँ, तो विमलेश जी जरा दोपहर की बात भी तो कीजिए।
2: यहाँ दोपहर में गर्मी इतनी बढ़ सकती है कि बाहर का काम कम करना ही समझदारी होती है, इसलिए गांव में पुराने समय से ही लोग गर्मी से बचने के लिए अपने पारंपरिक तरीके विकसित करते आए हैं,
0: जैसे मोटे दीवारों वाले घर,
2: जी,
0: छायादार आंगन, हवादार कमरे,
2: जी,
0: और खिड़कियों पर पर्दे। वे कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी तरह से दीवारों या पेड़ों की छाया मिल जाए।
2: जी,
0: क्योंकि रेगिस्तान में छाया केवल आराम ही नहीं देती, वो जीवन का सहारा है।
2: श्रोताओ, यहाँ एक और बड़ी चुनौती है, वो है पानी। सच है, जहाँ बारिश कम

0: हो और गर्मी बहुत अधिक हो, वहाँ पानी की हर बूंद की कीमत समझ में आती है।
1: जी हाँ श्रोताओ, राजस्थान के ग्रामीण जीवन में कुएं, टांके, तालाब और पारंपरिक जल संरक्षण की प्राचीन व्यवस्थाएं सदियों से महत्वपूर्ण रही हैं।
0: जी,
1: यहाँ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज बचाया हुआ पानी आने वाले दिनों में काम आएगा।
0: यही कारण है श्रोताओं कि यहाँ के रेगिस्तान में रहने वाले लोगों ने पानी को केवल उपयोग की वस्तु नहीं माना, बल्कि उसे संपत्ति और जिम्मेदारी की तरह देखा। तो अजीत जी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्यों न हम प्रकृति से यही पाठ सीख लें।
1: जी हाँ विमलेश जी, आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी। और अब बात करते हैं वहाँ के भोजन की। गर्मी और शुष्क वातावरण के कारण राजस्थान का पारंपरिक भोजन भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुआ है।
0: जी,
1: वैसे विमलेश जी क्या खाते हैं वहाँ के लोग?
0: अजीत जी, वहाँ बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाज, दालें, सब्जियां और लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थ भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, इसलिए तो बाजरे की रोटी, दाल और स्थानीय सब्जियां राजस्थान के प्रसिद्ध भोजन का हिस्सा हैं।
0: लेकिन अजीत जी, फिर वही बात जो हमने पिछले कार्यक्रम में कही थी, राजस्थान के इन गांवों की जिंदगी केवल गर्मी और पानी की कहानी नहीं है।
1: यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है लोगों की सहनशीलता और अनुकूलन की क्षमता।
0: जी,
1: यानी स्वयं को वहाँ के वातावरण में ढालने की क्षमता।
0: रेगिस्तान ने लोगों को सिखाया है कि जो कुछ हम बदल नहीं सकते, उसे स्वीकार करके जीवन में प्रसन्न रहना चाहिए।
1: जी,
0: कई बार प्रकृति को समझना और उसके अनुसार जीवन बनाना ही बुद्धिमानी है।
1: जी हाँ श्रोताओ, जरा सोचिए, हम शहर में गर्मी कुछ डिग्री बढ़ते ही परेशान हो जाते हैं। एयर कंडीशनर चाहिए, कूलर चाहिए, ठंडा पानी चाहिए।
0: लेकिन राजस्थान के गांवों में न जाने कितनी पीढ़ियों ने सीमित साधनों में जीवन को आगे बढ़ाया है। उन्होंने मिट्टी, पत्थर, हवा, छाया और पानी जैसे प्राकृतिक साधनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, और शायद यही हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है।
1: क्या सीख विमलेश जी?
0: यही कि जीवन हमेशा हमारी सुविधा के अनुसार नहीं चलता।
1: जी,
0: जीवन में भी तो मौसम बदलते हैं। कभी गर्मी आएगी तो कभी बारिश बहुत ज्यादा होगी, तो कभी सूखा पड़ेगा, कभी रास्ते कठिन होंगे। लेकिन इंसान की असली ताकत इस बात में है कि वो बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को कैसे ढालता है।
1: तो आप सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है?
1: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है तीन बुद्धिमान।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है।
1: तीन बुद्धिमान।
2: बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में किसी निर्धन व्यक्ति के तीन पुत्र थे, विक्रम, प्रताप और धीरेंद्र। एक दिन उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहने लगा,
3: मेरे पुत्रों।
4: जी पिताजी।
3: देखो, अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है।
4: पिताजी,
3: क्या पता कब लोग सुधार जाऊं।
5: पिताजी, ऐसा ना कहिए, अभी आपका जीवन बहुत लंबा है।
3: नहीं विक्रम बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास ना धन है और ना सोना चांदी। तुम लोगों को कुछ और ही करना होगा।
6: लेकिन पिताजी, हम क्या कर सकते हैं? ना खेत हैं और ना कोई दूसरा काम।
5: जी
3: पुत्र, तुम लोगों को दूसरे तरीके से धन अर्जित करना होगा।
5: लेकिन कैसा तरीका पिताजी?
3: बेटा धीरेंद्र, देखो, धन दौलत जैसी चीजें स्थाई नहीं हैं। आज हैं तो कल नहीं।
5: जी।
3: लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे बढ़कर दुनिया का कोई धन नहीं हो सकता, और वो है बुद्धिमत्ता।
5: जी पिताजी।
3: हर वस्तु और स्थिति को ठीक ठीक समझने का प्रयास करो।
5: जी पिताजी, हम प्रयास करेंगे।
2: समय बीता और कुछ समय बाद पिता चल बसे। सभी बेटे एक दिन मिलकर बैठे और विचार किया।
5: हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं।
6: हाँ तुम ठीक कहते हो भैया, तो क्यों ना हम एक काम करें।
4: भला वो क्या?
5: चलो घूम फिर कर जगत देखें, कुछ ज्ञान प्राप्त करें। पिताजी कहते थे ना कि घूमने फिरने से भी जब हम चीजों को स्थितियों को देखते हैं तो ज्ञान बढ़ता है।
6: हाँ ये ठीक रहेगा भैया।
2: तीनों भाई चल दिए। लंबी यात्रा थी। खाने पीने का सामान जब समाप्त हो गया तो उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले गांव के खेतों में मेहनत मजदूरी की। रास्ते में वे जो कुछ भी देखते बड़े ध्यान से उसका अवलोकन करते और निष्कर्ष निकालते। चलते चलते वे अंत में किसी नगर के पास पहुंचे। नगर के पास एक मैदान था जिसकी मिट्टी रेतीली थी। सबसे बड़ा भाई चलते चलते रुक गया। उसने ध्यान से मिट्टी को देखा और बोला,
5: भाई प्रताप, मुझे लगता है कि यहाँ से कोई ऊंट गुजरा है।
3: जी भैया, और वो भी बड़ा वाला ऊंट। पैर के चिन्हों से तो यही लगता है, क्यों भाई धीरेंद्र?
7: जी भैया आप ठीक कह रहे हैं।
5: मुझे लगता है कि ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा था।
2: वे बातचीत कर ही रहे थे कि एक घुड़सवार उनके पास आकर रुका।
5: महाशय क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं?
7: हाँ
6: आपका ऊंट खो गया है ना?
7: हाँ मेरा ऊंट खो गया है। हमें सब पता है महाशय, आपका ऊंट एक आंख से देख नहीं पाता है ना?
8: हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता?
5: महाशय हमें तो ये भी पता है कि उस ऊंट के साथ एक महिला और एक बच्चा भी था।
8: है?
5: आप सीधा उत्तर दिशा की ओर जाएं, आपको वहाँ ऊंट मिल जाएगा।
8: ऊंट मिल जाएगा? अरे ऊंट तुम लोगों के ही पास है।
6: नहीं नहीं,
8: अरे, नहीं। उसे कहाँ छिपा के रखा है?
6: अरे महाशय हमने तो ऊंट का मुंह तक नहीं देखा।
8: ऊंट का मुंह तक नहीं देखा?
6: नहीं
8: तो तुम्हें उसके बारे में सारी बातें पता कैसे चली?
6: वो
8: देखो मेरा ऊंट मुझे लौटाओ।
6: लेकिन
8: अरे, अरे तुम लोग ठग मालूम होते हो।
6: क्या
8: मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूँ।
2: भाइयों ने बहुत समझाया लेकिन वो घुड़सवार सुनने को तैयार ही नहीं था।
8: मुझे कुछ नहीं सुनना।
6: लेकिन महाशय हमारी बात सुन ले महाशय।
8: ये निकाली मैंने अपनी तलवार, अब चलो मेरे आगे आगे चलो चलो चलो।
2: इसी बीच उसका भाई भी आ गया। घुड़सवार ने अपने भाई को ऊंट ढूंढने के लिए भेज दिया और तलवार के बल पर उन्हें राजा के पास ले गया।
8: अब तुम सब राजा के पास चलो।
6: महाशय
8: चलो काट के रख दूंगा। चलो
9: दुहाई है महाराज, इन लोगों ने मेरा ऊंट चुराया है, मुझे न्याय चाहिए महाराज।
5: राजन हम चोर नहीं है, हमने तो ऊंट का मुंह तक नहीं देखा।
3: तुम्हें कैसे पता कि ऊंट इन लोगों ने ही चुराया है? ये तो कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं।
9: महाराज यदि ये कहते हैं कि इन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं तो ऊंट के बारे में मुझे इन्होंने सब कुछ बता कैसे दिया?
3: तुम लोगों को कुछ कहना है?
10: राजन हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि कुछ भी अपनी दृष्टि से चूकने नहीं देते। हमने परिवेश को समझने में बहुत समय लगाया है, इसलिए बिना देखे ही हमने सब कुछ बता दिया।
3: अच्छा तो ये बात है
10: जी।
3: हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेते हैं। द्वारपाल
11: जी महाराज।
2: राजा ने अपने द्वारपालों को बुलाया और उनके कान में कुछ फुसफुसाकर कहा। थोड़ी ही देर में द्वारपाल एक पेटी लेकर आए और उसे राजा के सामने रख दी।
3: अब बताओ कि इस पेटी में क्या रखा है?
5: महाराज इस पेटी में कोई गोल वस्तु है, अनार है।
6: और महाराज वो अनार कच्चा है।
11: जब पेटी खोली गई तो उस पेटी में सचमुच कच्चा अनार रखा था। बात बिल्कुल सही थी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन मंगवाए और लगा उनकी आवभगत करने।
12: खाइए खाइए लीजिए
13: महाराज।

0: महाराज, वहाँ पर मिट्टी भुरभुरी थी। हमने ऊंट के पद चिन्हों से जान लिया कि ऊंट बड़ा है।
1: क्या बात है
2: महाराज, उस मिट्टी पर जूतों के निशान थे। ये जूते महिला के थे और साथ ही साथ छोटे छोटे पैरों के निशान भी थे।
1: अच्छा,
2: इससे हमने जान लिया कि महिला के साथ कोई बच्चा भी है।
3: जी बहुत खूब,
1: लेकिन तुमने ये कैसे जाना कि ऊंट एक आंख से ही देख पाता है?
3: राजन, इसका पता लगाना तो बहुत ही आसान था। सड़क की दाहिनी ओर की घास तो ऊंट ने चरी थी, लेकिन बाई ओर की घास जो कि त्यों थी।
1: उत्तम, अति उत्तम। वाह, तुम लोगों की बुद्धि श्रेष्ठ है।
0: धन्यवाद महाराज।
2: जी महाराज, शुक्रिया महाराज।
1: मैं सचमुच चकित हूँ।
2: जी महाराज।
4: फिर क्या था, राजा ने तीनों भाइयों को अपने दरबार में रख लिया और उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया।
5: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम तीन बुद्धिमान। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। और अब सुनते हैं कार्यक्रम सरला ठकराल, भारत की पहली महिला पायलट।
6: सफलता की बुलंदियों को सभी छूना चाहते हैं, कामयाबी सभी हासिल करना चाहते हैं,
7: लेकिन कामयाबी उन्हीं के कदमों को चूमती है जो दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं।
6: आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो अपनी लगन और कार्यनिष्ठा से लाखों करोड़ों लोगों की और विशेषकर महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बन गई।
7: वे हैं सरला ठकराल, जिन्हें सन 1936 में मात्र 22 वर्ष की आयु में भारत की पहली महिला पायलट यानी विमान चालक बनने का श्रेय प्राप्त है।
6: भारतीय उड्डयन के इतिहास की बात करें तो अनेक महिलाएं हैं जिनका नाम उल्लेखनीय है, लेकिन वो प्रथम महिला कौन है जिन्होंने सबसे पहले इन सब के लिए मार्ग बनाने की शुरुआत की? जी हाँ, उनका नाम है सरला ठकराल। उनका जन्म 8 अगस्त सन 1914 को दिल्ली में हुआ था। तब भारत में ब्रिटिश राज था। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह लाहौर निवासी श्री पीडी शर्मा से हुआ। विवाह के बाद वो अपने पति के साथ लाहौर चली गईं। सरला के परिवार की एक बात बहुत दिलचस्प थी और वो ये कि उनके परिवार में 9 लोग ऐसे थे जिनका संबंध सीधा उड्डयन से था। पति भी अक्सर सरला को प्रोत्साहित करते। सरला को प्रशिक्षण दिलाने का बीड़ा उठाया उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी ने। एक दिन की बात है,
8: सरला बेटी।
9: अरे बाबूजी, आप
8: कहाँ खोई हो बेटी? जरा मैं भी तो जानूं कि क्या सोच रही है मेरी बेटी।
9: जी, मैं सोच रही थी कि मैं भी खाली समय में कुछ कर लेती।
8: बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। बेटा एक बात कहूँ?
9: जी
8: बेटा, मैंने अक्सर देखा है जब भी हम हवाई जहाज की उड़ान की पायलटों की बात करते हैं तो तुम बड़े शौक से सुनती हो।
9: जी बाबूजी, मुझे ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है।
8: तो फिर देर किस बात की, लाहौर फ्लाइंग क्लब के प्रमुख मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
9: अच्छा,
8: मैं उनसे कल ही बात करूंगा।
9: पर
8: मुझे लगता है तुम्हें वहां से पायलट बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए।
9: लेकिन बाबूजी, मैं धन्यवाद बाबूजी।
8: ये बात हुई ना बेटा। वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस।
6: साथियों, दूसरे ही दिन श्री शर्मा सरला को फ्लाइंग क्लब ले गए।

0: इसके लिए एक परीक्षा देनी होती थी। सरला शुरू से ही पढ़ाई में कुशाग्र बुद्धि थी। उन्होंने तैयारी की और वे प्रथम प्रयास में ही सफल हो गईं। मेडिकल जांच व अन्य औपचारिकताओं के बाद उनका दाखिला लाहौर फ्लाइंग क्लब में हो गया। और अब शुरू हुआ उनका प्रशिक्षण। आज प्रशिक्षण का पहला दिन था।
1: साथियों, मैं आप सबका लाहौर फ्लाइंग क्लब में डेप्यूटी चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की हैसियत से स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूं पायलट बनने की ट्रेनिंग में चुने जाने के लिए।
2: धन्यवाद सर।
1: देखिए, कुछ मायनों में हमारा ये सत्र पिछले सभी सत्रों से बहुत अलग है। क्या आप बता सकते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ?
3: सर, मुझे तो सब कुछ वैसा ही लग रहा है।
1: सब कुछ वैसा तो नहीं है, कुछ तो नया है।
4: सर, मैं बताऊं सर।
1: हाँ, कहो।
4: सर, मुझे लगता है पहली बार पायलट की ट्रेनिंग के लिए हमारे बीच एक महिला मित्र हैं।
1: बहुत खूब, पर तुम्हें कैसे पता कि ऐसा पहली बार हुआ है?
4: पिछले सप्ताह एक समाचार पत्र में छपा था।
1: बहुत अच्छे, वेरी वेल ऑब्जर्व। देखिए, पायलट बनने की पहली शर्त है आसपास की बातों का गहराई से अवलोकन करना।
5: हाँ, जी, सही बात।
1: एक पायलट को हमेशा सजग रहना होता है। अच्छा, अब बताओ कि और कौन कौन सी खूबियाँ एक पायलट में होनी चाहिए।
5: सर, मैं बताऊँ?
1: हाँ, सरला तुम बताओ।
5: सर, मुझे लगता है कि एक पायलट में सकारात्मक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। उसमें लगातार सीखने की इच्छा होनी चाहिए और उच्च दबाव या तनाव में भी अच्छी तरह से काम कर पाने की काबिलियत होनी चाहिए।
1: बहुत अच्छे सरला।
5: धन्यवाद सर।
1: तो साथियों, तकनीकी ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन ये व्यक्तिगत खूबियाँ यदि आप में हैं, तो बेशक एक दिन आप बेहतरीन पायलट बनेंगे। इस ट्रेनिंग के दौरान मैं आप सब से यही उम्मीद करूंगा। ऑल द बेस्ट।
5: थैंक यू सर।
0: प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसमें सफलता उन्हीं को मिलती है जिनमें कठोर परिश्रम, कार्य के प्रति समर्पण और एकाग्रता होती है। साथियों, पायलट बनने के लिए ए श्रेणी का उड्डयन लाइसेंस प्राप्त करना होता था और इसके लिए उन्हें 1000 घंटे की उड़ान पूरा करना जरूरी था। और आखिर वो दिन आ गया जब उन्होंने 1000 घंटों की उड़ान बिना व्यवधान के पूरी की।
6: जिस दिन उनके प्रशिक्षण की आखिरी उड़ान थी, उस दिन उनका पूरा परिवार, मित्रगण, पत्रकार और भी कई गणमान्य लोग हवाई अड्डे पर मौजूद थे।
0: मीडिया के लिए एक महिला द्वारा प्रशिक्षण पूरा करना खासा दिलचस्पी का विषय था। उड़ान शुरू हुई।
7: 1000 घंटों की ट्रेनिंग पूरी होना मजाक नहीं होता।
5: I'm so excited.
7: पहली महिला पायलट बनना हम देखेंगे अपनी आंखों से।

0: आप
1: कितने अच्छे तरीके से चले गए।
2: जब वो अपने जिप्सी मौत विमान से उतरकर लाउंज में आई तो लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया।
3: दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने साड़ी पहनकर ये उड़ान भरी थी और उन दिनों वे 4 वर्ष की एक बेटी की माँ भी थी।
2: इस प्रशिक्षण के बाद उन्हें वायुयान उड़ाने का 1 क्लास लाइसेंस प्रदान किया गया। समाचार पत्रों ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में जनता को बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
3: वायुयान उड़ाने का लाइसेंस प्राप्त करने के बाद उनका अगला लक्ष्य था विमान उड़ाने का व्यावसायिक या कमर्शियल लाइसेंस प्राप्त करना। लेकिन इसी बीच उनके जीवन में एक दुखद घटना घटी।
2: सन 1939 में उनके पति श्री शर्मा का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। उन्होंने जोधपुर आने का निर्णय लिया और कमर्शियल लाइसेंस के लिए वे प्रयास करती रहीं। अंततः उन्हें लाइसेंस मिल गया और अब वे लंबी दूरी की व्यावसायिक उड़ानों के लिए तैयार थीं। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और सभी नागरिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। लेकिन हिम्मत की धनी सरला ने हार नहीं मानी और मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लेकर ललित कला और पेंटिंग की क्लास में दाखिला लिया और ललित कलाओं की अन्य विधाओं का उन्होंने गहरा अध्ययन किया।
3: उन्होंने वस्त्रों और आभूषणों के एक से एक डिजाइन बनाए और उनका पेटेंट लिया।
2: सुप्रसिद्ध अखबार द ट्रिब्यून को साक्षात्कार देते हुए उन्होंने कहा था,
4: मुझे लगता है कि हमारे पास लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ और विकल्प भी हमेशा होने चाहिए। जब मैंने वस्त्रों और आभूषणों का डिजाइन तैयार किया तो उस समय की लगभग सभी प्रसिद्ध महिलाओं को यह डिजाइन बहुत पसंद आए। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि एक बहुत बड़ा कुटीर उद्योग खड़ा हो गया जिसने बहुत सी महिलाओं को 20 वर्ष तक सम्मानजनक रोजगार दिया।
2: अपने जीवन में सफलता के कई आयामों को छूने वाली सरला ठकराल का 15 मार्च 2008 को दिल्ली में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आकाश में पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ने वाली भारत की इस प्रथम महिला पायलट का जीवन साहस और आत्मविश्वास का एक अनूठा उदाहरण है जो महिलाओं के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
5: तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है, तो मुझे यानी अजीत को
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।

मन की बात है जन जन की, सभी की मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी

0: चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छाया लोग 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छाया लोग।

107 एफएम रेनबो, आप हैं अपने रेडियो वाला अमर के साथ। जी हाँ, प्रोग्राम है छाया लोक सेलुलर सुपरहिट। जी हाँ, और सुपरहिट की बात हो और डीडीएलजी की चर्चा ना हो, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। राज और सिमरन ने क्या खूब निभाई थी दोस्ती, क्या खूब निभाए थे अपने अपने किरदार। जी हाँ दोस्तों, और सिनेमा हॉल्स में महीनों चले थे, महीनों चला था ये फिल्म। और मुझे याद है, मैं कम से कम इस फिल्म को 3-4 बार देखा था। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि और भी कितने बार देखे होंगे ये नहीं पता। कुछ लोगों ने तो 8-10 बार देखे होंगे, कुछ लोगों ने 15-20 बार देखे होंगे। और ये हार्ट थ्रॉब उस वक्त शाहरुख खान और काजोल, जी हाँ, उनका जो इश्क दिखाया गया इस फिल्म में और एक जो चुलबुलापन, ये सबको पसंद आया। और ये सिर्फ 90s के नहीं, बल्कि अब भी अगर ये फिल्म कहीं पर आता है तो लोग सामने बैठ जाते हैं, हॉल में नहीं तो टीवी पर।

माधुरी दीक्षित और सलमान खान के का जो एक्टिंग था वो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया था दोस्तों। फिल्म दीदी तेरा देवर दीवाना इस गीत में हम आपके हैं कौन, जी हाँ। और ये फिल्म मुझे लगता है कि नदिया के पार का मॉडर्न रूप था, जी हाँ, नदिया के पार जो कि सचिन की फिल्म थी, अरुण गोविल थे उसमें, और उसी को उतारा गया था एक मॉडर्न रूप में हम आपके हैं कौन में। और ये फिल्म भी कई महीनों तक सिनेमा हॉल्स में चले। आज भी ये फिल्म जब टीवी पर आता है तो हम चाव से देखते हैं इसे।

जमाना कुड़ियों का हो या किसी और का हो, फिलहाल तो स्टूडियो की घड़ी में है 7:25 और 46 सेकंड। आप हैं रेडियो वाला दोस्त अमर के साथ ऑन छाया लोक 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक। जी हाँ, अब जो गाना आपके सामने आएगा उसके लिए सलमान खान माधुरी दीक्षित के साथ ट्रेजिक हीरो के रूप में हमने देखा था, ट्रेजिक हीरो के किरदार में हमने देखा था संजय दत्त को फिल्म साजन में। सागर के किरदार को बहुत ही बखूबी निभाया था संजय दत्त साहब ने और ये फिल्म भी सिनेमा हॉल में महीनों चली थी दोस्तों।

जी हाँ, बारी आती है ऋषि कपूर और सनी देओल की, तो याद आ जाती है फिल्म दामिनी। जी हाँ, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सनी देओल का कभी न भूलने वाला वो संवाद, वो डायलॉग। और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हिट हुई दोस्तों। और इस फिल्म की बात करें तो बैरिस्टर चड्ढा को कौन भूल सकता है। बिल्कुल, सुनते रहिए। जी हाँ, बैरिस्टर चड्ढा यानी अमरीश पुरी जी।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।

और अब जो गीत आप सुनेंगे वो आर डी बर्मन साहब के कंपोजिशन में, आर डी बर्मन साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में उनकी अंतिम फिल्म थी दोस्तों, और अंतिम ब्लॉकबस्टर जो मूवी हिट फिल्म रही 1942 ए लव स्टोरी, जिसके लिए जाते जाते भी ले गए फिल्म फेयर अवार्ड आर डी बर्मन ने। और बता दिया कि जीनियस जीनियस ही होता है, कभी ग्रहण लग भी जाए तो जीनियस जीनियस ही होता है। सुनते रहिए

0: 37वीं डाक एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं एवं डाकघरों से पेंशन लेने वाले पेंशनभोगियों के पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एस सी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, पश्चिम बंगाल सर्किल, P36 CR एवेन्यू, कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और यह डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in, adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 31/8/2026 तक या इसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट के जरिए डाक एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332212050, 0332212612, 0332212500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छाया लो 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छाया लो।

क्या बताऊं मैं दिल का आलम। जी हाँ दोस्तों, बातें हो सेलुलर हिट्स की और आशिकी की, बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। राहुल रॉय तथा भाग्यश्री को हमने इस फिल्म में हीरो और हीरोइन के किरदार में देखा। क्या हिट हुआ था दोस्तों आशिकी, सिनेमा हॉल हाउसफुल, सारे शोज हाउसफुल। उस वक्त ना तो मोबाइल था ना ही हर घर में टेलीविज़न। जी हाँ, ब्लैक में टिकट मिलते थे और लोगों में कभी कभी टिकट के लिए तू तू में भी हो जाया करता था।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

बजकर 8 मिनट आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छायालोक पूनम के संग उलियोन 107 दिल से दिल तक। और आज है रक्षाबंधन, एक ऐसा बंधन सिर्फ और सिर्फ राखी बांधने के लिए नहीं, ना ही मिठाई खिलाने के लिए, बल्कि भाई बहन के उस रिश्ते को सेलिब्रेट करने का दिन है जिसमें प्यार के साथ खूब सारी नोक झोंक भी होती है। तो बातें और भी होंगी, होती रहेंगी, लेकिन उससे पहले खूबसूरत नगमा आप सबके लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए। ओनली ऑन 107 दिल से दिल तक।

8:14। और अभी कुछ देर पहले ही मैंने कहा कि रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधने और मिठाई खिलाने का त्योहार नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। प्यार के साथ साथ खूब सारी नोक झोंक भी इसमें शामिल होती है भाई बहनों के बीच। कभी एक दूसरे की टांग खींचना, तो कभी मुश्किल वक्त में बिना कहे साथ खड़े हो जाना। भाई बहन का रिश्ता कई रंगों से भरा होता है और हिंदी सिनेमा ने भी इस रिश्ते के अलग अलग पहलुओं को अपनी कहानियों में खूबसूरती से दिखाया है। और आज अगर भाई बहन के साथ कोई फिल्म देखने का प्लान बना रहे, तो मेरे पास कुछ फिल्मों की लिस्ट है, आप सबके साथ साझा करना चाहती हूं। हम साथ साथ हैं फिल्म आई 1999 में। सूरज बड़जात्या की हम साथ साथ हैं बॉलीवुड की उन फिल्मों में शामिल है जहां परिवार और रिश्तों को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। फिल्म में तीन भाइयों विवेक, प्रेम और विनोद के साथ उनकी बहन संगीता का रिश्ता भी कहानी का अहम हिस्सा है। परिवार में गलतफहमियां और मुश्किलें आती हैं, लेकिन रिश्तों की डोर टूटती नहीं है। फिल्म के गाने, पारिवारिक माहौल और साथ रहने का संदेश इसे आज भी फैमिली एंटरटेनर बनाए हुए हैं। फिलहाल 8:16 और वक्त है एक खूबसूरत नगमे का। सुनते रहिए, साथ रहिए और अगले 9 बजे तक हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

8:21 और अगली जिस फिल्म के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है माय ब्रदर निखिल। फिल्म आई 2005 में। इस फिल्म में भाई बहन के रिश्ते का एक बेहद संवेदनशील पहलू सामने आता है। जूही चावला ने फिल्म में अनामिका का किरदार निभाया जो अपने भाई निखिल के साथ उस वक्त भी खड़ी रहती है जब समाज उससे दूरी बनाने लगता है। HIV से संक्रमित होने के बाद निखिल को कई तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसकी बहन उसका साथ नहीं छोड़ती। फिल्म बताती है कि सच्चा भाई बहन का रिश्ता मुश्किल हालात में ही सबसे ज्यादा मजबूत नजर आता है। फिलहाल 8:22 बातें होंगी और भी फिल्मों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत सा नगमा आप सबके लिए। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

आशा भोसले की खूबसूरत आवाज में फिल्म फिजा से आपने गीत सुना। करिश्मा कपूर और ऋतिक रोशन की फिजा भाई बहन के रिश्ते पर आधारित भावुक फिल्मों में से एक है। फिल्म में फिजा अपने भाई अमान के लापता होने के बाद उसे खोजने के लिए सालों तक इंतजार करती है। जब अमान वापस लौटता है तो उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। फिजा हर संभव तरीके से अपने भाई को संभालने और उसे सही रास्ते पर वापस लाने की कोशिश करती है। फिल्म में बहन का अपने भाई के लिए प्यार और चिंता कहानी की सबसे मजबूत कड़ी है। साल 2001 में फिल्म आई थी कभी खुशी कभी गम। इस फिल्म में परिवार के बिखरने और फिर दोबारा एक होने की कहानी दिखाई गई है। शाहरुख खान के राहुल और ऋतिक रोशन के रोहन के बीच का भाईचारा फिल्म के सबसे भावुक हिस्सों में से एक है। राहुल के परिवार से दूर चले जाने के बाद रोहन उसे वापस लाने की ठान लेता है। वो सिर्फ अपने भाई को नहीं बल्कि पूरे परिवार को फिर से एक साथ लाने की कोशिश करता है। यही वजह है कि फिल्म में भाई का अपने बड़े भाई के प्रति प्यार और लगाव कहानी को भावनात्मक मजबूती देता है। फिलहाल 8:36 वक्त है एक और खूबसूरत नगमे का। सुनते रहिए, साथ रहिए और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

उदित नारायण और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज में फिल्म जोश से आपने ये प्यारा सा गीत सुना। शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय

बच्चन स्टारर जोश में दोनों ने जुड़वा भाई बहन मैक्स और शर्ली का किरदार निभाया था। दोनों स्वभाव में अलग हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए उनका गहरा लगाव है। शर्ली अब विरोधी गैंग से जुड़े एक युवक के करीब आती है तो मैक्स का प्रोटेक्टिव भाई वाला रूप सामने आता है। गैंग वॉर और एक्शन से भरी इस फिल्म में भाई बहन की बॉन्डिंग कहानी को एक

साल 2008 में फिल्म आई थी जानी तू या जाने ना। इस फिल्म को भले ही दोस्ती और प्यार की कहानी के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन फिल्म में भाई बहन के रिश्ते की भी प्यारी झलक देखने को मिलती है। कॉलेज लाइफ, दोस्ती, परिवार और रिश्तों के बीच आगे बढ़ते युवा किरदारों की कहानी इसे एक हल्की फुल्की और नॉस्टैल्जिक फिल्म बनाती है। और आज के दिन यानी रक्षाबंधन के दिन कुछ ऐसा देखने का मन हो जिसमें इमोशन के साथ कॉमेडी और रोमांस भी हो तो ये फिल्म अच्छी पसंद हो सकती है। फिलहाल जब इस फिल्म के बारे में इतनी बातें हो गई तो इसी फिल्म से एक खूबसूरत सा नगमा आप सबके लिए सुनते रहिए, साथ रहिए।

मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये डायलॉग आज भी बॉलीवुड के सबसे मशहूर डायलॉग्स में से एक गिना जाता है। राकेश रोशन की करण अर्जुन में सलमान खान और शाहरुख खान ने भाइयों की भूमिका निभाई और दोनों की जिंदगी एक दर्दनाक घटने के बाद अलग हो जाती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है बल्कि पुनर्जन्म और बदले की कहानी के बीच दोनों भाइयों का रिश्ता फिल्म का भावनात्मक आधार बना रहता है। एक्शन और ड्रामा से भरपूर ये फिल्म भाईचारे को बेहद फिल्मी और यादगार अंदाज में पेश करती है। तो इसी फिल्म से एक खूबसूरत सा नगमा आप सबके लिए।

8:57 मिनट और अब पूनम के जाने का समय है एकदम करीब। तो आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त बिल्कुल मत रहिए। इस आशा के साथ पूनम लेती है विदाई। टाटा बाय बाय।